0: ओके गुड मॉर्निंग क्लास।
1: मॉर्निंग सर।
0: और सब्जेक्ट फॉर टुडे योर्स अमोंग इन अ सेंटेंस।
1: अको
0: उसे के उरक इकाओ।
1: अबुंग दा इस कुकनात इस द बेस।
0: ओके वेरी गुड वेरी गुड। उसे पा।
1: अकुकप।
0: उसे के बुडोई इकाओ।
1: अमोंग कल देरो इकाओ।